0: 25 नालढुङ्गा कृषि तथा बिउ उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेड बैतेश्वर 4 काभ्रे बगर दोलखा।
1: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन र विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हाम्रो रेडियो 103.5